पर असी नाम दा स्वाद छड़ के रसा कसा विच फस गए, अहंकार विच फस के दुख पाए। ए दुख तेरे भेजे हुए नहीं, ए साडे अपने ही सहेड़े।

तरम में श्रेष्ठ तरम, हर को नाम जप निर्मल कर्म। छगल क्रिया में उत्तम क्रिया, साध संग दुर्मत मल क्रिया। छगल बाणी में अमृत बाणी, हर को जस सुन रसन बखानी। मैं तो कर्म करने सी सिमरन वाली, मैं कुछ कीता भी सही तां रिद्धियां सिद्धियां नूं प्राप्त करके हंकार दी पंड होर वड्डी कर लई। धन गुरु नानक पातशाह संसार नूं उतारदे होए जदों वली कंधारी जिहड़ा बड़े अहंकार दे नाल चिल्ले कट्टे, तपस्या कीती, रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त कीतियां ते अपने जोर दे नाल पानी बंद कीती बैठे। जेड़ा मेरा चेला होवे उसनू ए पानी मिल सकदा है। धन गुरु नानक पातशाह क्योंकि जगत जलंदे नू ठारन जो आए सन, जा पहुंचे वेख लैंदे सन भई किथे सृष्टि नू दुख दिता जा रहा है, किथे रब दी साजी होई सृष्टि दुखी है ते फिर आप जाके सुख वंडदे सन। पापी नू मारिया नहीं, पापी नू तार देना। जिथे भी पुन्ना दा गलत इस्तेमाल हो रहा सी पुन्ना नू पुन्ना वाले पासे जोड़ दिता। वदी कंधारी कर्म कांड करके पत्थर ते बह के बड़िया रिद्धियां सिद्धियां विखांदियां विखांदियां पत्थर ते बैठा होया, आप भी पत्थर हो चुका सी। धन गुरु नानक पातशाह जी ने मरदाने नू भेजिया, जा मरदानिया पानी लैके आ। मरदाना एक वेरी गया, दूजी वेरी गया, तीजी वेरी गया, बड़े अहंकार दे नाल कहन लगा जे इतना ही तेरा गुरु शक्तिवान है तो आप क्यों नहीं कढ लैंदा पानी, तू मुसलमान होके काफर दी संगत कर रहे, कुछ अकल कर। ते मैं काफर नू पानी नहीं दे सकदा। धन गुरु नानक पातशाह अच्छा अहंकार दूर जो करना है। मर्दानिया आ दो पत्थर पुट, सत करतार सत करतार नाम जपदिया जदों ए दो पत्थर चुके तो विचो अमृत रूपी चश्मा फुटिया। उच्चारण करो श्री वाहेगुरु वाहेगुरु। हुण जितना पानी जितना जल ए काबू विच रख के बैठा सी ना वली कंधारी, सारा दा सारा तले आ गया, उपर जल सुक गया। गुस्से विच आके लोहा लाखा होया होया मेरियां शक्तियां दा इसनू पता नहीं, मैं की कर सकदा हां। आ मैं हुणे दसदा हां, अपनी शक्ति दे नाल एक वड्डा पत्थर रोड़िया पहाड़ी तो। मर्दाना कहन लगा महाराज कृपा करो मेहर करो, इस पौजल तो बचना बड़ा औखा है। ते धन गुरु नानक पातशाह कहन लगे मर्दानिया तू करतार नू चेते रख, जलाल विच रहो। करतार दे नाल जेड़े जुड़े रहंदे हन ना उन्हां दा कोई वाल विंगा नहीं कर सकदा। एडा पर्वत दा पर्वत रुड़ के आ रहा है ते धन गुरु नानक पातशाह जी ने बख्शिश कीती, कृपा कीती, कोट ब्रह्मंडा दे महादेव जां आपने नदर कीती तां ए पत्थर नेड़े ही आके जदों रुकिया तां आपने झट इस पत्थर ते पंजा ला दिता ते इस तरह लग्या जिवें मोम दे विच पंजा खुब जांदा। सारा जगत जो वली कंधारी तो दुखी सी धन गुरु नानक पातशाह जी दे चरणां विच आ जुड़िया। हुण वली कंधारी सोचदा है भई मैं तां कखों होला हो गया, एडियां शक्तियां दा मालक सां पर मेरी तो कोई भी वाह ना चली। हो सकदा ए मेरे अहंकार नू दूर करन लई आया होवे, आप खुदा आया होवे, मेरी रिद्धियां सिद्धियां अहंकार ते क्योंकि पुन्ना ते रिझदा है रब। हो सकदा है मैनू तारन लई मेरियां रिद्धियां सिद्धियां मेरे अहंकार दे सदके मैनू तारन आया होवे, मन नीवा हो गया।
ਤੇ ਫਿਰ ਤਲੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮਸਤਕ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਦਮ ਬੋਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਉਹ ਸਾਈ ਦਿਆ ਪਿਆਰਿਆ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਿਆ ਬੰਦਿਆ ਹੁੰਦਿਆ ਹੁੰਦਿਆ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਤੂੰ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਤਾਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਹੰਕਾਰ ਮੇਟਣ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਪਰ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਡ ਹੋਰ ਬੰਦ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਕਰ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਤਨੀ ਖੁਦੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਹੰਕਾਰ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਵਧਦੇ ਹਨ। ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਖੁਦੀ ਮਿਟੀ ਤਬ ਸੁਖ ਵਏ। ਜਦੋਂ ਖੁਦੀ ਮਿਟ ਗਈ ਤਾਂ ਸੁਖ ਹੀ ਸੁਖ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਤੱਕ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਜਬ ਲੋ ਕੋਟ ਉਠਾਈ ਚੱਲੇ ਤਬ ਤੱਕ ਦਾਮ ਭਰੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਜਿਤਨੇ ਤੱਕ ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਡ ਛਿੜਤੇ ਹੈ, ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਲੇਖਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਹਿਸਾਬ ਦਿੱਤੇ ਕੋਈ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਮਾਨ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਚੁੰਗੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਲੰਘ ਜਾ, ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਐ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ, ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਕੋਈ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ, ਉਸ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕ। ਉਹ ਪੰਡ ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇ। ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਬ ਤੱਕ ਪੋਟ ਉਠਾਈ ਚੱਲੇ ਤਬ ਤੱਕ ਦਾਮ ਭਰੇ। ਪੋਟ ਡਾਰ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਦੇ। ਪੋਟ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਖ ਹੀ ਸੁਖ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਸਭ ਕੁਛ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਓ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੋ।

तारदे होए जिथे जिथे भी गए वड्डे तो वड्डे पापी नू किवें तारिया जिवें सज्जन नू संत बना दिता भूमिए चोर नू साधु बना दिता आप ही नहीं अनेकां नू गुरु नानक दे चरणां नाल जोड़न वाला बना दिता बिपालपुर दे कोड़ी दे पास गए ता उसनू भी फिर यही शुभ उपदेश दिता पाई जिस वाहिगुरु ने तैनू सोना ए मनुच्छा जन्म बख्शिया सी अखां नक कन मूह आरोग कंचन वर्गा शरीर दिता सी जे तू शुकराना कर दो जे तू उसका सिमरन कर दो ता आज तेरी ए हालत ना होंदी बचपन खेडां विच जवानी विकारां विच तैं बतीत कर दिती उस अकाल पुरख वाहिगुरु नूं तू भुल गयो विसार दिता ते जदों तू विसारिया तां फिर दुखां ने आ घेरा कत्या ते अज तेरी ए हालत हो गई याद रख जिस तरह हुण तेरा शरीर कोड़ी है ना तैनू कोई नाल नहीं बैठन देंदा शहरों बाहर कढ दित्ता लोगां ने तैनू जदों तू पंज भूतक शरीर त्याग के जावेगा आत्मा तेरी कलंकित होई होवेगी दरगाह विच भी तैनू कोई कोल ना बैण देवेगा क्योंकि कोल ओही बैठदे हन जिन्नी तेरा नाम ध्याया धन गुरु नानक पातशाह कहिंदे ने जिसना ने अकाल पुरख वाहिगुरु का नाम ध्यावना कीता है सिमरन कीता है इसलिए उन्हां दा ही आउणा सफल होया है।

बिना सिमरन तो तेरा जीवन किसे भी लेखे नहीं। सेवा और सिमरन तो बिना इस तरह जीवन है, कुआर कन्या जैसे करत सिंगारा, क्यों रलिया माने बाज बतारा। भाई साहब गुरदास जी सिख पंथ दे वेद व्यास कहंदे हन, त्रिग सेवा बिन हाथ पैर होर निफल करन। सेवा तो बिना तेरा शरीर निष्फल है, सिमरन तो बिना तेरा मनुष्या जन्म सफल नहीं हो सकता। होर जितनिया भी तेरिया करनिया हन ओ किसे कम नहीं। गुरु नानक सच्चे पातशाह एक बड़ी सुंदर रमणीक थां ते समुंदर दे किनारे आप जुड़े बैठे हैं।

उसने इस शरीर नू सुंघिया ते वापस चला गया। क्योंकि कई दिनों तो भुखा सी बुग्याड़, फिर आया हाथ सुंगे, मस्तक सुंगया, पैर सुंगे ते फिर वापस तुर गया। कीर्तन की समाप्ति हुई, धन गुरु नानक पातशाह बिरती तो उथान होए, मर्दाने ने बेनती की गरीब नवाज सचे पातशाह, आ मृतक शरीर पिया है, बाघ ने पहला आके इस नूं सुंघिया चला गया, फिर इसका मस्तक सुंघिया, हाथ सुंघे, कदम सुंघे, फिर वापस चला गया। जापदा सी कई दिनों तो भुखा है, पर उसने अपनी खुराक वेख के इस नूं भक्षण क्यों नहीं कीता, तां धन गुरु नानक पातशाह कहणगे, मर्दानिया आ कीर्तन दी रब्बी बाणी दी आवाज इसदे कन्ना तक पहुंची है और इसका मन निर्मल हो गया, हिरदा स्वच्छ हो गया। इसने जिस मृतक शरीर नू सुंघिया न, इसलिए सुंघिया कि इसने कोई चंगा कर्म भी कीता, लेकिन कोई नहीं कीता।

सुख प्रजा दी सेवा करके भुखे नूं भोजन देना, लोड़ अनुसार कपड़ा लीड़ा गरीबां नूं देना, उन्हां दीआं लोड़ां पूरियां करनियां। जे ए सारा धन तू नाल ले जाना चाहुंदा है ना, तां संसार विच जितने भी गरीब गुरबा है सब नूं वंड दे।

जीवन आनंदमय हो गया, जिस जीवन कोई डर सी ना भाई कोई धन चुरा ना लवे, आज सुख दी नींद सौंदा है, हर वेले सिमरन करदा है। ते धन गुरु नानक पातशाह जी नू आके कहन लगा, महाराज हुण कोई होर सेवा बख्शो। ता गुरु नानक सचे पातशाह जी ने सूई दिती, आख्या भाई दुनी चंद आ साडी सूई रख लै अमानत।

घर वाली नू आके जिक्र कीता भाई अज सतगुरु ने ए सुई दिती है ते आख्या दरगाह विच ले लवांगा। घर वाली बड़ी ज्ञानवान सी, आख्या ऐ परमेश्वर दे प्यारे, ऐ परमेश्वर दे बंदे, सतगुरु ने एक कसवटी लाई है, तुहानू समझ नहीं आई? आख्या मैनू तो

इस चौपाई दे विच अपनी नहीं सारे संसार दी सुख मंगदे हैं। सुखी बसे मोरो परवारा, सेवक सिख सबे करतारा। चौपाई दी शुरुआत हमरे करो हाथ दे रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा। गुरु नानक नाम लेवा, दुनिया दे किसी कोने भी बैठे हो, जद भी पंजा बाणिया दा उपाठ करते हैं ता चौपाई साहब दा पाठ भी जरूर करते हैं। औखे वेले भी कोई पीड़ बने ता संगतां बड़े प्यार दे नाल चौपाई साहब दा पाठ कर दिया है, क्योंकि गुरसिख दे मन दी जिथे ए लालसा हुंदी है पाठ करन दी, उथे भरोसा भी है। इसे वास्ते गुरसिख दोनों वक्त होर बाणियां दे नाल चौपाई साहब दा पाठ भी करते हैं, ते नाले कहंदे हैं तो मैं छाड़ कोई अवर ना त्याऊं, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं। तो जो चाहिदा है वो तेरे कोलो मिल सकदा है, इस करके तेरे सिवा मैं

अपनी पोती दे नाल रात दे हनेरे विच बरसात विच तुरिया जा रहे हैं। जंगल खत्म होया, कुछ पठान बैठे नजर आए, अग बल रही है। ए दादा ते पोती उन्हां पठाणा नूं कहण लगे, रब तुहाडा भला करे, साडे कपड़े गिले हन, कुछ समा अग सेक लैण दिओ। उन्हां पठाणा ने इस बाबे नूं देखिया जिहड़ा अखां तों अन्ना है, मन विच बुरा ख्याल आया, ए बाबा की साड़ा बिगाड़ सकता है। ए सोच के उस लड़की नू अपनी कैद विच पाया, पर वो लड़की किसे तरह कैद विचों भज निकली अपने बाबे दे नाल। फिर पठाना ने घेरा पाया, इन्हां नू मारन लगे। इस बच्ची ने हाथ जोड़ के कलगियां वाले पातशाह दे चरणां विच अरदास कीती, हमरी करो हाथ दी रक्षा। अरदास कीती, तोड़ उड़ दी नजर आई, उसे तोड़ विचों शां शां दी आवाज करदा एक तीर आया। उस पठान दे लगा जिहड़ा बाबे नूं मारन लगा सी। देखदिआं देखदिआं धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सिखां समेत आ पहुंचे हैं। उन्हां दोनां दी रक्षा कीती। उस बाबे ने उस बच्ची ने सतगुरां दे चरणां ते मत्था टेकिआ। इस बच्ची दा रोना देख के साहिब जी कहण लगे, बेटा रो ना, जद भी कोई प्यार ना गुरु दा ओट आसरा लैंदा है, ते गुरु हर वेले उन्हां दी रक्षा करदा है। तां ते आओ पाई आपां भी होर आसरे छड्ड के इक परमेश्वर दा

दुनिया पलट गई। एक बड़ा ऊंचा पहाड़ है, चार चुफेरे बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। एक छोटा जिया पानी दा तल है, कुछ महात्मा बैठे ने, कीर्तन शुरू होया। एक बड़ा ही तेजस्वी पुरुष इन्हां सारियां दे विचकार बैठा है। कीर्तन ऐसा शुरू होया, उस कीर्तन दे विच सारे गवाच गए ने। सुरत ने उड़ारी मारी, एक अनुभव नगर जा पहुंचे। ऐसा नगर जिदे बड़े बड़े ऊंचे मकान ने, बड़े बड़े वटे महल बने हुए ने, पर ओ महल इटा गारे दे नहीं, हीरे जवाहरातां दे नालों भी सूक्ष्म शहद बने हुए ने। उस शहर नो बेगम पुरा भी कहंदे ने, जिथे गम कोई नहीं। तेजस्वी पुरुष दे नाल असी भी इस शहर के अंदर दाखिल होए हैं। इस शहर बारे धन गुरु अर्जुन साहब अपने

बड़े बड़े वड्डे महल ने पर इना महलां दे विच रहिंदा कौन है सिर्फ उस परमेश्वर दे प्यारे रहिंदे ने

मन नहीं मन रहा, पर अकाल पुरख नहीं समझाया। ता दुष्ट दमन जी कहंदे ने संसार विच अंधेरा बड़ा है अज्ञान दा, बचन कीता ऐ प्यारे मैं तेरे विच चानना बन के रवांगा, जिथे तू जाएगा अंधेरा दूर भज जाएगा। ते नाले मैं तेनू अपना पुत्र बना के संसार विच भेज रहे हैं।

दुष्ट दमन जी उस बैबान विच बैठे ने, वो बैबान वापस इस अनुभव नगर बेगमपुरा शहर तो तुरे आ, जिन्हों आपा सचखंड भी कहने, जिथों तुरे आ सी हेमकुंट नाम दे पर्वत दे असी वापस आए, इत्थे आराम कीता, इत्थों ए बेबान तुरे आ, किथे जा पहुंचे आ, गुरु तेग बहादुर साहब दे महल, माता गुजरी जी दे दीवान खाने, अमृत वेले, आत्मक मंडला वाले जीव स्वागत वास्ते पहला ही हाजिर सन, आरती उतारी जा रही, आनंद मंगल पढ़े जा रहे ने, आत्मक मंडला वाले खुश हो रहे ने, अचानक प्रकाश होया, हर पासे बनास्पति खिड़ गई, मानो आज दुनिया दा पार हरण वास्ते एक होर जोत प्रगट हो रही है। कुछ घड़िया बाद हर पासे खबर फैल गई के माता गुजरी जी के ग्रह एक सुंदर बालक ने जन्म लिया है, ते कलगी तरपातशाह आप लिखते ने कि साडा प्रकाश पटना साहब की धरती पे होया, मुर पित पूर्व

हेमकुंड पर्वत जिथे अज हजारां संगतां दर्शन करन वास्ते जांदियां ने, सचमुच मन सच्चा प्यार सच्चा ते कलगीधर पातशाह फिर आप लैण वास्ते अगू आंदे, अपनी गल दे नाल लगा लैंदे अपने चरणा दे विच जगह दे दिंदे। आओ भाई उस दुष्ट दमन दे तपो स्थान दे आपां भी दर्शन करिए, कीर्तन करिए सुनिए, हो सकता है कीर्तन सुनदे हैं साड़ी भी सुरत उडारी मारे ते उस शहर दे विच सानू भी जगह मिल जावे, साड़ा आया सफला हो जावे।

सियो रंग लाए गुर कृपाल होए दुग जाए। Embrace love for Guru's Bani. When the Guru shows mercy, pain is destroyed.

अर्पण कर दिती। इतिहास विच लिखिया के धन गुरु रामदास पातशाह 6 दिन लगातार आउंदे, भाई सोमे पासों वटक मंगदे ते भाई सोमा हजूर दे अर्पण कर देंदा। 7वें दिन जदों आए तां भाई सोमे ने आप ही जितनी वटक होई सी हजूर दे अर्पण करनी चाही, तां धन गुरु रामदास पातशाह कहन लगे, सोमिया अज असी लैन नहीं आए, अज देन लई आए हां। भाई सोमा चरणा नूं लिपट गया, ओ सच्चा पातशाह, ओ मेरा देसाई, असी तैनू की देन जोगे हां, असी तां जुगा जुगंतर तेरे पासों ही लै रहे हां, और तेरे दिते हुए विच्चों जे तिल मात्र देवी दिता तां की दिता है, तेरा दिया तुझे क्या अर्पूं, तेरे दिते हुए विच्चों जे तिल मात्र देवी दिता है तां क्या दिता है। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु। भाई सोमे ने नैणा दे जल नाल हजूर दे चरण धो दिते, ते ज्यो ज्यो चरणा नूं लिपटदा है अंदर दा शीशा साफ हो रहा है। जदों सिख गुरु दे चरणा ते मस्तक रखदा है तां पापां दे छोड़ कट जांदे हन, अंदर दा शीशा साफ हो जांदा है। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु। धन गुरु रामदास किसे प्यार विच आके भाई सोमे नूं वरदान दे रहे हन, सोमा शाह वे परवाह, ओ सोमिया तू वे परवाह होवेगा, सोमिया तू शाह सदीवेगा, इस दुनियादारी दा ही नहीं तेरे परमार्थ विच भी तेरे नाम विच भी बरकतां पैणगियां, तेरे नेत्रां विच बरकत पवेगी, जिसनूं एक वेरी वेख लेगा वो निहाल हो जावेगा, तेरी रसना ते बरकत होवेगी, जिनू वरदान दे देवेगा, जिनू एक वेरा बचन कह देवेगा वो बचन कदी खाली नहीं जाएगा, तेरे हत्थां विच बरकत होवेगी, दे नाल भी तू आशीर्वाद दे दिती, उदा लोक भी सुखी ते परलोक भी सुहेला हो जाएगा। उच्चारण करो।

मतलब में कटिया क्या भाई तू कर रहा है इन्हें किया था कल का मीरा में तो पाई फिर दर्द है आज कितनी वर्दी है इतनी खुशबुआ कड़ी कृपा करो कहने लगा पता लिया ये सारी कृपा मेरे धन गुरु नानक की भक्त हजर कह लगे मैं बता लिया सच में बाबा ये कड़ी चीज तेरी से हो एडी वी जात हजर कह लगे बता लिया एडिया प्यार वाली होर कि मेरे क्या है।

0: सत्य तेरे खंड सत्य ब्रह्मन सत्य तेरे नो सत्य आकार सत्य तेरे करण सब विचार सत्य तेरे अमर सत्य दीवान सत्य तेरा हुक्म सच्चा फरमान सत्य तेरा कर्म सच्चा निशान सत्य तो दाखिला करो सच्चे सब तान सच्चे सब दू
1: सच्ची तेरी सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे बाजा नानक सच्चे सच्ची जो मर जमे सो कच कच महला पहला
2: वड्डी उड़े जा वड्डा ना वड्डी उड़े सच्चा वड्डी उड़े निश्चल था वड्डी उड़े जाने ला वड्डी उड़े बिरसा पाओ वड्डी उड़े पुछंदा वड्डी उड़े जा पिया नानक और नक थुंजे की तक ना सरु जा
0: महला तू जा ए जग सच्चे की को ढीली सच्ची कब जबा एक नाम तुम्हारे एक नाम को मैं करीबना एक नाम पाने कडले एक नाम आया बिचनवास ए पी आखन जापे किशन रा नानक गुण गुण जाने जाको।

0: सतकथा श्लोक मला पहला बिस्मार नाथ बिस्मार वेद बिस्मार जी बिस्मार पे बिस्मार रू बिस्मार रंग बिस्मार लागे फिरे जन बिस्मार कौन बिस्मार पानी बिस्मार अग्नि खेरे बनाने बिस्मार तरती बिस्मार खाने बिस्मार साधक के प्राण
1: बिस्मार श्लोक बिस्मार विरोग बिस्मार पुख बिस्मार पो बिस्मार शिफ्ट बिस्मार सला बिस्मार औदल बिस्मार दरा बिस्मार नेड़े बिस्मार दूर बिस्मार

जिस जीव आत्मा दे जीवन विच प्रभात आ गई उसने राह पा लिया, द्वेष खत्म हो गई, आत्मा परमात्मा दी एक मिकता हो गई, उसके गल विच जित दी माला पवेगी। गुरु तेग बहादुर जी दे उचारण कीते राग जैजावंती दे चार शब्द अखीर विच आए हन। जैजावंती नूं किसी भी संगीत ग्रंथ राग किसी राग दी बंश विच ना लिखना दर्शाउंदा है कि नवेकला राग है। गुरु महाराज जी ने जैजावंती नूं अखीर विच रख के नवेकली गल ही कीती है। गुरु साहबान ने राग नूं नवीं नुहार, नवा मोड़ ते नवा गायन रूप दे के नवा वड्डा पसारा पा के आत्मिक ठंड प्राप्त करन दा हथियार बनाया। इस राग दे नादात्मक स्वरूप विच दो गंधार, दो निषाद अते बाकी सारे शुद्ध सुर लगते हैं। जैजावंती विच कोमल गंधार दी वरतों एक विशेष ढंग नाल उसके दोवें पासे ऋषभ सुर रख के कीती जांदी है। इस दा वादी सुर ऋषभ अते समाधि पंचम है ते गौण दा समा रात दा दूजा पहर मन्निया है। सरवण करो, रे मन कौन गत होए है तेरी, भाई कमरपाल सिंह जी पासों। दूजे शब्द गायन कर रहे हैं डॉक्टर दर्शन सिंह जी नरूला। शब्द बोल हैं राम सिमर राम सिमर, ए है तेरा काज है। पहला शब्द रे मन कौन गत होए है तेरी।